त्रिपुरहरा त्रिदोषशमना त्रिभुवनेशा नीलग्रीवा सुहास्यवदना नन्दिवहना अन्धकमर्दना गजान्तका दक्षक्रतुदलना दानवदमना दयानिधे अमितभक्तप्रियकरा ताटिकान्तकपूज्यत्रितापहरा तुझे गुणवर्णावया दशशतवक्त्रा शक्तिनभेची सर्वथा नित्यशान्तनिर्विकल्पनिरञ्जना आशापाशरहितविरक्तपूर्णा निजभक्तपाशविमोचना जन्ममरणामोचकजो जे विषयकामनायुक्त तुझ स्वामी अनन्य भजत त्यासी पुरविसी विषयपदार्थ जे जे इच्छित सर्वही।

वदन पाहुनि रतिपति लज्जित कटि देखोनि हरिवदनन दाखवित गमन देखोनि लपत मराळ मानस सरोवरी।

करीतसे। तंत वितंत घन सुस्वर शिवप्रीत्यर्थ करिता वाद्य समग्र तेणे कंठ सुरस कीर्ति अपार रत्नदाने नेत्र दिव्य होती एव सर्व अलंकार।

यथार्थ पसरेल समुद्रा ऐसा सहस्र अर्बुदे धन जाना राये दिधली वरदक्षिणा वस्त्रे अलंकार नवरत्ना गणना कोणा न करवे अश्वशाला गजशाला रत्नखचित याने विशाला चित्रशाला नृत्य

व्र विराट पुरुष सर्व ही जो एव जितुके देवता चक्र ते शिवाचे अवयव समग्र एकादश रुद्र द्वादश मित्र।

पूर्ण त्रिभुवना तन समाये तो शत्रु होवो नि शरणागत उभयतासी सिंहासनी स्थापित दायाद कर जोड़ो नि समस्त मणती आम्हा रक्षा सर्वस्वे मग सर्व दळभार सि

10,000 वर्षे निर्विघ्न राज्य केले नैषधपुरी, जैसा पितामह नळराज परम पुण्य श्लोक तेजः पुंज, तैसाच चित्रांगद भूभुज न्याय नीति वर्ततसे। शिवरात्रि सोमवार प्रदोष व्रत, सीमंतिनी चढ़ते करीत, तिची ख्याति अद्भुत सूत सांगे शौनकादिका। हे सीमंतिनी आख्यान सुरस, ऐकता सौभाग्यवर्धन स्त्रियास, अंतरला भ्रतार बहु

त्रिदश निंदक असुर तामस अहंकार मद्य सेविति अपर्णा हृदयारविंद मिलिंद श्रीधर स्वामी पूर्ण ब्रह्मानंद अभंग अक्षय अभेद न चले न ढले कदाही शिवलीलामृत ग्रंथ प्रचंड स्कंद पुराण ब्रह्मोत्तर खंड परिसोत सज्ज

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

आइए सुनते हैं हेमंत कुमार जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण जी का गीत। स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

द्वाविशत ओम चक्रधरायाः अहम् रक्षाम् कुरु कुरु सर्व बाधा हरणि देवे नमो नमः सर्व प्रकार बाधा शमनम् अरिष्ट निवारणम् कुरु कुरु फट श्रीम ओम कुब्जिका देवे ह्रीम ठस् स्वाहा शीघ्रम् अरिष्ट निवारणम् कुरु कुरु देवी शाबरी क्रीम ठस् स्वाहा शारीरिकं भेदाहं मायां भेदय पूर्णं आयुः कुरु हेमवती मूल रक्षां कुरु चामुंडाय देवे नमः शीघ्रं विघ्न निवारणं सर्व वायु कफ पित्त रक्षां कुरु भूत प्रेत पिशाचान घातय जादू टोणा शमनं कुरु सति सरस्वतै चंडिका देवै गलं विस्फोटकान विक्षित्य शमनं कुरु महाज्वर रक्षयं कुरु स्वाहा सर्व सामग्रीं भोगं सत्यं दिवसे दिवसे देहि देहि रक्षां कुरु कुरु क्षणे क्षणे अरिष्टं निवारय दिवसे दिवसे दुःखहरणं मंगलकरणं कार्यसिद्धिं कुरु कुरु हरहि ओम श्री रामचंद्राय नमः हरहि ओम भूर्भुवस्वः चंद्रतारा नवग्रह शेषनाग पृथ्वी देवी आकाश निवासिनी सर्वारिष्ट शमनं कुरु स्वाहा आयुरारोग्यमैश्वर्यं वित्तं ज्ञानं यशोबलं नाभिमात्रे जले स्थित्वा सहस्रपरिसंख्यया जपेत् कवचमिदं नित्यं वाचां सिद्धिर्भवेत्तत्तः अनेकविधिना भक्त्या कवचसिद्धिश्च जायते शतमावर्तयेदत्सु मुच्यते नात्र संशयः सर्वव्याधी भयस्थाने मनसास्यतु चिन्तनं राजानुवशतां यान्ति सर्व कामार्थ सिद्धये अनेन यथाशक्ति पाठेन शाबरी देवी प्रियतां मम शुभं भवतु नवनाथ सिद्ध मंत्र ओम नमो सिद्धनवम अंगुष्ठाय नमः मुखाय नमो नमः शीर ब्रह्म धुधुक्कार शीरसे ब्रह्म तनम तनम तनम नमो

द्वाविशत ओम चक्रधरायाः अहम् रक्षाम् कुरु कुरु सर्वबाधा हरणि देवे नमो नमः सर्वप्रकार बाधा शमनम् अरिष्ट निवारणम् कुरु कुरु फट श्रीम ओम कुब्जिका देवे ह्रीं ठ स्वाहा शीघ्रम् अरिष्ट निवारणम् कुरु कुरु देवी शाबरी क्रीं ठ स्वाहा शारीरिकं भेदाहं मायां भेदय पूर्णम् आयुः कुरु हेमवती मूल रक्षां कुरु चामुण्डायै देवे नमः शीघ्रं विघ्न निवारणं सर्व वायु कफ पित्त रक्षां कुरु भूत प्रेत पिशाचान घातय जादू टोणा शमनं कुरु सती सरस्वती चंडिका देवी गलं विस्फोटकान विक्षित्य शमनं कुरु महाज्वरान विक्षित्य शमनं कुरु महाज्वर रक्षयं कुरु स्वाहा सर्व सामग्रीं भोगं सत्यं दिवसे दिवसे देहि देहि रक्षां कुरु कुरु क्षणे क्षणे अरिष्टं निवारय दिवसे दिवसे दुःख हरणं मंगलकरणं कार्य सिद्धिं कुरु कुरु हरहि ओम श्री रामचंद्राय नमः हरहि ओम भूर्भुवस्वः चंद्रतारा नवग्रह शेषनाग पृथ्वी देवी आकाश निवासिनी सर्वारिष्ट शमनं कुरु स्वाहा आयुरारोग्यमैश्वर्यं वित्तं ज्ञानं यशोबलं नाभिमात्रे जले स्थित्वा सहस्रपरिसंख्यया जपेत् कवचमिदं नित्यं वाचां सिद्धिर्भवेत्तत्तः अनेकविधिना भक्त्या कवचसिद्धिश्च जायते शतमावर्तयेदत्सु मुच्यते नात्र संशयः सर्वव्याधी भयस्थाने मनसास्य तु चिन्तनं राजानुवशतां यान्ति सर्वकामार्थ सिद्धये अनेन यथाशक्ति पाठेन शाबरी देवी प्रियतां मम शुभं भवतु नवनाथ सिद्ध मंत्र ओम नमो सिद्धनवम अंगुष्ठाय नमः मुखाय नमो नमः शीर ब्रह्म धुधुक्कार शीरसे ब्रह्म तनम तनम तनम नमो

त्रिदोषशमना त्रिभुवनेशा नीलग्रीवा सुहास्यवदना नन्दिवहना अंधकमर्दना गजान्तका दक्षक्रतुदलना दानवदमना दयानिधे अमितभक्तप्रियकरा ताटिकान्तकपूज्यत्रितापहरा तुझे गुणवर्णावया दशशतवक्त्रा शक्तिनभेची सर्वथा नित्यशांत निर्विकल्प निरंजना आशापाशरहित विरक्तपूर्णा निजभक्तपाश विमोचना जन्ममरणामोचकजो जे विषयकामना युक्त तुझ स्वामी अनन्य भजत त्यासी पुरविसी विषयपदार्थ जे जे इच्छित सर्वही

धव तैसा मुख शशि अभिनव त्रैलोक्य सौंदर्य गाळुनी सर्व ओतिली वाटे कमलोद्भवे तिचा जन्म काळी द्विज सर्व जातक वर्णिती अभिनव चित्रवर्मा राया।

अर्थ पसरेल समुद्रा ऐसा सहस्र अर्बुदे धन जाना राये दिधली वरदक्षिणा वस्त्रे अलंकार नवरत्ना गणना कोणा न करवे अश्वशाला गजशाला रत्नखचित याने विशाला चित्रशाला नृत्यशाला

तीव्र विराट पुरुष सर्व ही जो एव जितुके देवता चक्र ते शिवाचे अवयव समग्र एकादश रुद्र द्वादश मित्र

हित वस्त्र अंजन विवर्जित नेत्र राजपुत्र पहातसे न्याहाळिता तटस्थ स्वरूपासी वाटती रंभा उर्वशी दासी कुचक मंडलू यासी उपमानाही द्यावया तप्त चामिकर वर्ण

समस्त राज्यभार समर्पून तपासी गेला इंद्रसेन, तेथे करूनिया शिवार्चन शिवपदासी पावला। आठ पुत्र पितया समान सीमंतिनीसी झाले जाण, दहा सहस्र वर्षे निर्विघ्न राज्य केले नैषधपुरी। जैसा पिता मह नळराज परम पुण्य श्लोक तेजपुंज, तैसाच चित्रांगद भूभुज न्यायनीती वर्ततसे। शिवरात्री सोमवार प्रदोष व्रत सीमंतिनी चढ़ते करीत, तिची ख्याति अद्भुत सूत सांगे शौनकादिका। हे सीमंतिनी आख्यान सुरस ऐकता सौभाग्यवर्धन स्त्रियास, अंतरला भ्रतार बहु

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

आइए सुनते हैं हेमंत कुमार जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण जी का गीत। स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

श्रोताओं आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है श्रीनिवास खड़े जी ने।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।